0: नमस्कार प्रणाम सब गोटे के जय मिथिला 2000 98.5 एफएम पर अहाँ सुन रहल छी मिथिला गूंज द वॉइस ऑफ मिथिला इन ऑस्ट्रेलिया। हम छी शिशिरेंदु झा। अपन भाषा अपन संस्कृति आ अपन इतिहासक संग प्रत्येक रविवार हम अहाँ सब के बीच उपस्थित होइत अछि। आई के विषय केवल अतीतक कथा नहीं अछि, ई हमर सबके अस्मिता बौद्धिक परंपरा आर भविष्य के प्रश्न अछि। मिथिलाक इतिहास अइ विशिष्ट टॉपिक पर आइ हम सब बात करब। सरस्वती नदी के नाम से तो सब गोटे सुनने हेबे, परंतु सरस्वती नदी के तट से लक आइ के जे गंडकी नदी छथिन केना राजा निमि से जनक धर गार्गी याज्ञवल्क शास्त्रार्थ से विद्यापतिक पदावली तक आ घरक कोहबर से विश्वक कला दीर्घा में उपस्थित मधुबनी पेंटिंग, आइ हम हजारों वर्ष के यात्रा के किछु प्रमुख पड़ाव बुझबाक प्रयास करब। हमरा संगे किछु गेस्ट सेहो छथि और किछु गेस्ट जुड़ा वाला छथि, तो जना जना गेस्ट सब जुड़ना शुरू हेता हम अपने सबके संगे हुनका प्रस्तुत केने जाएब। तो आओ सबसे पहिने स्वागत करी जे स्टूडियो में गेस्ट उपस्थित छथि, श्री नवनीत झा जी और संध्या झा जी।
1: नमस्कार। नमस्कार सब गोटा के। धन्यवाद शिशिर जी, और आई बहुत महत्वपूर्ण हमर सबके आई होय वाला छे सेशन, क्योंकि हम सब मिथिला के गौरव मिथिला के इतिहास के बारे में बात करबे, तो दोसर गेस्ट का हम रिक्वेस्ट करब जे कनी परिचय दियो।
2: प्रणाम सब श्रोताओं को, मेरा नाम संध्या है और आज हम मिथिला की धरती के बारे में, मिथिला की हिस्ट्री गौरव इस सब के बारे में चर्चा करेंगे।
0: हमरा संगे दूटा आर गेस्ट जोड़ा वाला छथि, जनाओ जोड़ता अपने सबके हम अपने सबके उनका सामने उनका उपस्थित करब। तो यदि हम अपने सबके कहे कि एक क्षण के लिए अपने सब आँख बंद करूँ और ई कल्पना करूँ जो बहुत प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर बसल एकटा समुदाय ओकर नेतृत्व करे छथि विदेह माथव, और हुनकर कुल पुरोहित छथिन गौतम। शतपथ ब्राह्मण में अई समुदाय के उल्लेख छे। शतपथ ब्राह्मण की होइत अछि, तो ई एकटा वेद के पाठ छे। अई समुदाय के उल्लेख छे जैमे राजा अपन मुख में वैश्वानर अग्नि धारण कयने छला, अर्थात राजा ततेक यशस्वी तेजस्वी छला है जे साक्षात अग्नि के स्वरूप छला है। पुरोहित के मंत्र में घृत के उल्लेख होइत अछि, वो जे मंत्र होइ छै ओहिसँ अग्नि प्रज्वलित होइ छै। तब ई अइ मिथिला के इतिहास के प्रारंभ होइ छै सरस्वती नदी के तट सँ, ओहि समुदाय सँ जकर कुल पुरोहित छलखिन गौतम। कालांतर में ई भेलै जे सरस्वती नदी विलुप्त भेनाइ शुरू भऽ गेलखिन, और ओहि समुदाय के लेल ई बड़ा कष्टकारी बात भेलै। तऽ गौतम ऋषि अपन राजा विदेघ माथव के संगे मिलकर एकटा यज्ञ के आयोजन केलथि, और कियाकि आब ओ नदी नहीं छलखिन है तो आवश्यकता पड़े एक एहन एहन स्थान के जतः ई समुदाय जे से विकसित भ सके, जीवन जीवित भ सके। तो एक दोसर नदी छली है सदा नीरा, जे आई के गंडकी नदी छथिन, ओहि सदा नीरा के तट पर ई सब गेलखिन और ओतय जे छै ई यज्ञ केलखिन गौतम ऋषि और माथव महाराज। माथव महाराज के मुख से जे मुख में क्या कि अग्नि चलिन है और वो अग्नि के स्वरूप चलखिन है, तब दिशा दिखाव के लेल वो अग्नि जे छे से एक धारा में एक दिशा में बढ़ी गेलखिन। तो ई कथा अपने सबके जारी रहत, और ऐसा आगा हम सब फिर बढ़ब। तबे तक मिथिला के एहन गीत जे घर घर में गायल जाइए कोनो विशिष्ट प्रोग्राम से पहिने अई गीत के गिनाए ए गीत के भेनाए अवश्यम भावी छे ई विद्यापतिक गीत छे आओ सब गोटे मिलकर सुनै छी अई गीत के

0: बहुत सुंदर गीत और इस गीत के इस महत्व छे जे आइयो मिथिला के घर घर में इस गीत गायल जाय छे गुनगुनायल जाय छे ऐसा पहिने की आगा बढ़ी अहां सब के लेल एकटा विशेष सूचना अछि जे कियो एहि प्रोग्राम से जुड़ा चाहे छी ओ 0426-399-461 पर संपर्क कर सके छी कोनो तरह के मैसेज कॉल यदि करा चाहे तो 0426-399-461 पर कॉल कर सके छी अथवा मैसेज भेज सके छी और एक और महत्वपूर्ण सूचना जे आवा वाला अक्टूबर में 1719 अक्टूबर मिथिला कल्चरल सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज कर रहल छ भव्य दुर्गा पूजा के और मिथिला महोत्सव के अपने सबके स्वागत है ई ओपन टू ऑल छे सब गोटे अवे जाय जाओ और मिथिला मैथिली और मैथिल के विषय में जने जाय जाओ ई अहां सबके अवसर प्रदान करत यदि कियो एमे पार्टिसिपेट करय चाहे छी कोनो तरीका सा अहां सबके स्वागत है तो आओ आप समय आब गेल अछि जे अपन आओ दूटा नया गेस्ट सब भेट गेल कयल जाय जुड़ चुकल छथि हमरा सब संगे श्री अविनाश कुमार जी और श्रीमती ममता जी अविनाश जी अहाँ के स्वागत है
1: धन्यवाद सुशेंद्र जी
0: ममता जी अहाँ के स्वागत है
2: धन्यवाद सुशेंद्र जी
0: तो केहन बुझा रहा है जे ई मिथिला के एक टा चैनल ऑस्ट्रेलिया में छे अपन मिथिला से दूर की बुझा में आबि रहा है जे केहन की कोन तरह के अहाँ के भावना है ए चीज के लक
1: सबसे पहले तो सब श्रोतागण के नमस्कार प्रणाम देखियो मिथिला के भौक और अगर मिथिला के चर्चा नहीं छे तो मतलब कि अहां बेजान छी
0: वाह बहुत उत्तम
1: हमें कोनो दम नहीं छे एहन टाइप के बात भ जाय छे तो अपना आप में ई गर्व के बात तो छेबे छे प्लस एमे इहो छे कि जे आधार छे हमर सबके जीवन छे जीवन के तरीका छे मिथिला और मैथिल के बात होना है और ए सब के साकार भ रहल छे हमर सबके जो ऑर्गेनाइजेशन छे मिथिला कल्चरल सोसाइटी और एमे फंक्शन होय वाला छे दुर्गा पूजा हम सब जे कर रहल छिए जे सिडनी में भ रहल छे और ये अपने आप में एक बहुत बड़का बात छे
0: वाह ये बहुत एकटा ऐतिहासिक कदम है मिथिला कल्चरल सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया के अहाँ सबके साधुवाद अहाँ सबके बहुत बहुत शुभकामना के लेल एक मिनट में ममता जी के अगर अहाँ अपने कह सकिए जे आवे वाला समय में कोन तरह से देखे छी जे ऑस्ट्रेलिया में मिथिला कल्चरल सोसाइटी या मैथिल सबके ई जे एकटा मंच भेटलन है ओकर कोन प्रकार से हम सब यूज कऽ पाएब या उपयोग कऽ पाएब
2: धन्यवाद ससुरंद जी बहुत नीक क्वेश्चन ई आई ऑस्ट्रेलिया देश में रहा वाला हर मैथिल के मन में जरूर एक बेर अवित हेतै कि जे आगा की हम तो बहुत देखलहुँ बहुत सीखलहुँ हमर पूर्वज बहुत सिखेलथि लेकिन आब जखन हम अतः छी हम अपना लेल तऽ जरूर जे होइए से प्रैक्टिस करै छी या फॉलो कऽ लै छी लेकिन बादमे जे आबयवला हमर जेनरेशन हैत हुनका सबके ई अपन संस्कृतिके केना पासन करब ओहिके लेल जे ई मिथिला कल्चरल सोसाइटी बनाए गेल छै ओहिमे आओर जते प्रयास कयल जा रहल छै जे भी तरीका से जेना कि दुर्गा पूजा भेल और दुर्गा पूजा रिलेटेड बहुत सारा इवेंट भ रहल छै ओहि सब के थ्रू एकटा सब देखायल जेतै सुनायल जेतै इनफैक्ट सबके शामिल कऽ कऽ हर बच्चा के बुजुर्ग के सब गोटा के एक तरह से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देल जेतै और देल जा रहल छै
0: हां सब
2: इतना चलित रहतै
0: जी जी अपने सब आवा वाला जनरेशन के बारे में तक सोच रहल छे अपन भाषा संस्कृति कला के विषय में तक सोच रहल छे ई मात्र कल्पना मात्र से हमर जे हृदय से गदगद भ रहल छे अहां सब वास्तव में बहुत बहुत नम्र प्रयास कर रहल छी और ए प्रयास में अहां सब के सफलता भेटा या माँ भगवती से कामना है तो चलू अपन चर्चा के हम सब आगा बढ़ाबी तो आई चर्चा पे छी हम सब मिथिला के इतिहास तो मिथिला के इतिहास शुरू होय छे सरस्वती नदी के तट से और गंडकी नदी के तट पर जहाँ सरस्वती नदी नदी विलुप्त भ गेलखिन तो गंडकी नदी के तट पर गौतम ऋषि और हुनकर महाराज माथव ओतय आबि कऽ यज्ञ केलखिन और ओहि यज्ञ में जे छै से एकटा एकटा अग्निपुंज निकललै जे अग्निपुंज सँ ई प्रार्थना कयल गेलै जे हमरा सबके सही रास्ता देखाओ किएकि अब सरस्वती नदी तऽ विलुप्त भऽ गेल छथि तऽ हमसब कतऽ रही कतऽ ई समुदाय के विकास हेतै कतऽ ई समुदाय जे छै से जीवित रहतै तऽ एहन जगह पर जाकर किएकि ओहि समय में जे संपूर्ण भूभाग छलैए खास कऽ जे सदानीरा जे गंडकी के नाम पहिने छलैए ओहि नदी के तट पर तट तक समुद्र सँ तुरंत तुरंत निकलल रहे तो पूरा जे जे जगह रहे से भिजल रहे तो हिनका सबके एकटा ओ जे पुंज रहे जे अग्निपुंज रहे से रास्ता देखेलकन एकटा स्थान के जे हिमालय से नीचा छै और गंगा से ऊपर छै ओहि स्थान के देखेलखिन तो ओहि स्थान पर माथव महाराज अपन राजपुरोहित गौतम ऋषि के संगे और गौतम ऋषि के विषय में अगर अपने सब जानैत हेबै तऽ जे छटा फिलॉसफी छै भारत में छटा दर्शन शास्त्र छै ओहिमे सँ एकटा दर्शन शास्त्र गौतम ऋषि के छै तऽ एक दर्शन शास्त्र पर कहीं और बात करब हम लेकिन कियाकि हमरा ई बतेनाय आवश्यक है जे गौतम ऋषि के छथिन हुनकर की स्टेटस छै भारतीय दर्शन में तऽ एहि भूभाग के कहल गेलै मिथिला अब ओकर नाम मिथिला केना पड़लै ओहिके पाछा सो एकटा कहानी छै आगा बढ़ऽ सँ पहिने एकटा गीत सुनि लेल जाय जे गीत हमरा बुझाइए जे इहो गीत ओतबा महत्वपूर्ण छै जतेक पछिला वाला छलैया

0: शुभ है शुभ कोनो मंगल कार्य से पहने ये गीत अवश्य भावी छे उपनयन होए विवाह होए मुड़न होए ऐसा पहने क्या कि बचपन में हम कई बेर ये गीत सुन चुकल छी तो हमरा पता है गीत के कतेक महत्व छे तो आओ आगे बढ़ल जाए जना कई डाल चले वहां जाए यदि अपने सब जुड़ा चाहे छी और कॉल करे चाहे छी कोनो तरह के मैसेज भेजे चाहे छी व्हाट्सएप करे चाहे छी तो नंबर है 0426399461। तो कहि रहल छलहुँ हैं जे सदा नीरा तटपर या गंडकी के तटपर यज्ञ भेलै और यज्ञ से जे अग्निपुंज उत्पन्न भेलै से देखलखिन जे हिमालय से दक्षिण और गंगा से उत्तर एकटा भूभाग छै ओहि भूभाग पर हुनका रह के स्थान देल गेलनि। ओहिमे कालांतर में एकटा महाराज भेलखिन जिनकर नाम रहलनि निमी। ओहि निमी के महाराज के यज्ञ करवाबे के रहनि तो गेलखिन वशिष्ठ ऋषि ओहिठमा और वशिष्ठ ऋषि ओहि समय में इंद्रलोक में यज्ञ करवा रहल रहथिन। तो निमी महाराज के वशिष्ठ जी कहलखिन जे अपने वेट करियौ और हम जाबे तक इंद्रदेव के ओहिठमा यज्ञ करवा लेब ओकरा बाद हम अपने के यज्ञ करवाएब। जाय पर निमी महाराज किछु नहि बजलखिन ओहि चीज के वशिष्ठ जी मौन स्वीकृत बुझि गेलखिन। तो जहन वापस एलखिन तो सालक साल बीतल जा रहल रहे निमी वृद्ध भेल जा रहल रहथि तो हुनकर जे छै से कनिक पेशेंस जवाब दऽ गेलनि और दोसर ऋषि सबके बजा कऽ ओ ओतऽ जे छै से यज्ञ के अपन शुरुआत कऽ देलकै यज्ञ के प्रारंभ कऽ देलखिन। बीच में इंद्रदेव इंद्रलोक में जहन समाप्त भेलै यज्ञ तो वशिष्ठ जी एलखिन निमिक लग आ देखलखिन जे यज्ञ चल रहल छै तो हुनका बड़ा क्षोभ भेलनि जे हम कहने छलिए जे हम करवाएब और अपन अहाँ कहलखिन निमी के जे अहाँ जे छै से अहाँ अपन वचन भंग केलहुँ हैं जबकि यथार्थ ही रहै जे निमी वचन देबे नहि केलखिन ओ मौन भऽ गेल रहथिन। एहिसँ क्रोध भऽ कऽ वशिष्ठ जी कहलखिन जे आइ के बाद अहाँ अपन शरीर के अहाँ के शरीर नहि रहत अहाँ रहब लेकिन अहाँ के शरीर नहि रहत अर्थात अहाँ विदेह भऽ जायब। ताहिसँ ओ जे विदेह भेलखिन और कियाकि निमी महाराज जे रहथिन हुनकर कोनो गलती नहि रहनि तो ओहो एहि चीजसँ क्षुब्ध भऽ कऽ वशिष्ठ जी के श्राप देलखिन जे आइसँ अहूँके जे अवस्था अछि से बिना कोनो शरीर के रहत। ठीक छै नेक्स्ट बर्थ में वशिष्ठ जी फेर के फेर जन्म भेलनि। वशिष्ठ जी के जन्म भेलनि एकटा ऋषि के अथी पर। अविनाश जी अहाँ किछु बाजय चाहै छियै
1: एहिके बारे में हम विस्तार से बतायब लेकिन ओहिसँ पहिले हम दूटा बात कहब। सबसे पहले कि जे मिथिला के इतिहास छै ई ओतबे पुरान छै जते कि भारत जते कि अयोध्या और ओतबे इम्पोर्टेंट छै जते कि अयोध्या के राम और वहाँ के जे राजधानी छै ओकर कहानी जुड़ल छै। कैले कि दुनू के जे जोड़ छै ना अगर हम पीछा जबै बहुते पहले जबै फोर फादर जते भेलखिन तो एगो जगह आयत जहाँ पे राम के भी उहे पूर्वज छलखिन और जनक जी के भी पूर्वज उहे छलखिन। यानी कहे के मतलब दुनू जे वंशज छै उ सूर्य वंश छै और दुनू इक्ष्वाकु वंश से आयल छै और इक्ष्वाकु के भेलखिन उ भेलखिन मनु जी के
0: जी
1: पौत्र भेलखिन नहीं सो मनु जी के पुत्र भेलखिन और उनकर पुत्र भेलखिन इक्ष्वाकु जी के पुत्र भेलखिन निमी और जेकर निमी के अहाँ चर्चा कर रहल छलिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी छे। एहि कहानी में होइ छे कि जे हम बतलिए कि निमी जी के यज्ञ के लेल प्लान केलखिन कि जे हमरा बड़का यज्ञ करे के छै बहुत हजार साल के यज्ञ करे के छै उनके कुलगुरु छलखिन वशिष्ठ जे सेम कुलगुरु छथिन वहाँ अयोध्या के श्री राम के भी छै।
0: बहुत इंटरेस्टिंग बात छै।
1: हाँ तो हम दुनू के साथ साथ में कंपेयर कऽ के लऽ कऽ चलै छी तो ओहिमे सुनय में अच्छा लागत। तऽ एहन भेलै कि कहलखिन कि जे अहाँ हमर कुलगुरु छी और हमर यज्ञ करू लेकिन ओहि समय में ओ भगवान इंद्र के यज्ञ करवा रहल छलथिन तो ओहि समय में मौन सहमति के रूप में कह दलखिन इशारा में
0: ठीक
1: आ जाएंगे या अल कम देर एना कह कहलखिन लेकिन समय बितले और इंतजार बहुत दिन के भौ गेले और मुहूर्त बीतल जाए छले तो ऊ की केलखिन जे गौतम ऋषि के यहाँ चर्चा के लिए इससे पहले
0: जी, जी।
1: उनके थ्रू ही
0: यज्ञ
1: करवा ले यज्ञ तब हो गेले मतलब कि कंटिन्यू हो गेले लेकिन अब आगले अहम के बात गुस्सा के बात अई दुनू में अब अई में की भेले कि वशिष्ठ जी कुलगुरु होकर उनका श्राप दे दिलखिन कि जे ऐसे अहा कि जे शरीर हा इस शरीर खत्म भ जाए अहा विदेह भ जाए निमि जी के आब गेले गुस्सा त आब गुस्सा में की केलखिन ओहो उल्टा क श्राप दलकी जे सेम टू यू सेम टू यू मतलब कि अहू विदेह बन जाए अहू के शरीर नहीं रहत तो यानी कि दुनू आदमी के शरीर खत्म भ गेले दुनू आदमी मर गेलखिन तो आप तो दुनू के कहानी बन गई कि जे अब केना चलते तो बहुत बड़ा विषय बन गए कि जे केना लाइल जाए तो अमे दुनू के अलग अलग कहानी बनल पहला चर्चा करे छी वशिष्ठ जी के तो वशिष्ठ जी बहुते दिन उनते बिना शरीर के रहलखिन तो एक समय में भगवान वरुण देव और मित्रदेव एगो काइंड ऑफ कि बहुत ही कॉमन नहीं छे अपना सबके लिए मित्रदेव कहना है कैले कि हम सब ओकर ज्यादा चर्चा और पूजा पाठ नहीं करे छी लेकिन मित्रदेव एगो देव भेलखिन जे कि मित्रता के लेल जानल जाय छथिन
0: मित्रावरुण जे छै
1: मित्रावरुण दुनू के साथ
0: के संगे संगे चले छथिन
1: बिल्कुल बिल्कुल तो ओही समय उनके संयोग से ही उनके साथ से ही उनके थ्रू ही ऋषि वशिष्ठ का जन्म हुआ और जिसके कारण उनका नाम मैत्री वरुणी हो गया
0: वाह बहुत बढ़िया
1: तो इस प्रकार से तो ऋषि वशिष्ठ जी को शरीर मिल गया और फिर से वो पूरे वंश के कुलगुरु बन गए क्योंकि सेम वंशज है जो यहाँ इक्ष्वाकु जी हैं निमि जी हैं उनके साथ पैरेलल में जो अयोध्या में चलेगा जो वंशज चलेगा उनके भी वो गुरु होंगे अब बात करते हैं इधर निमि जी के लिए तो निमि जी क्या हुआ वो तो बहुत स्वाभिमानी थे मिथिला के लोग होते भी हैं तो क्या हुआ उनके भी जो ऋषिगण थे उन्होंने किसी तरह जोर के मथ करके एक नया जीवन दान करने की कोशिश किए और बोले कि हम आपके लिए एक शरीर बना देंगे आप भी इस शरीर में आइए लेकिन वो कहलखिन कि नहीं
0: अच्छा
1: बिल्कुल मना कर दिलखिन निमि जी कल की नहीं हम नहीं रहेंगे लेकिन सब अई बात से प्रसन्न होकर देवता सब कलखिन के वरदान मांगो तो कलके कि जे देखियो हम शरीर तो नहीं धारण करब लेकिन हमर इच्छा छे कि जे हम ई जे हमर वंश छे मिथिला के धरती मिथिला के व्यवहार मिथिला के संस्कृति एकर सक हम देख सके
0: की बात छे वाह
1: और ओई के लेल उपाय ढूंढ के कलके ठीक छे अहां के शरीर नहीं मिलत लेकिन आप अहां हरेक शरीर में वास कर सकलिए और हरेक आदमी के पलक पर जाकर
0: निमिष जे है जे निमिष सबसे पलक झपकबे छी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ई बहुत सुंदर जानकारी है श्रोतागण अपने सब के लेल जे अपने सब जे पलक झपकबे छी त हमरा सब संगे महाराज निमि जे छै से वास करे छै
1: बिल्कुल त इहे दुनू जे कहानी छै निमि वहीं से निमि और निमिष और उनकर जे शरीर खत्म भ गेलै ना तो उन्हीं के जोर तोड़ के मथि के एगो नया शरीर क्रिएट कलके और उनके अंश छलै निमि जी के और वहीं से मिथि ओकर नाम मिलले मिथि माने मथि के
0: किया कि उनका मथल गेलै त मथ मथला के बाद अगर नहीं जे केओ जानै छै मथनाय की छै त चरणिंग उनकर जे जे पार्थिव शरीर रहन ओकरा चरण कहल गेलै और चरण क के जे किछु निकललै ओकरा मिथि कहल गेलै आ वह जे छै से वह फेर महाराज बनलखिन उनकर नाम भेलनि महाराज मिथि
1: बिल्कुल बिल्कुल और वहीं से जे वहाँ के जे धरती बनलै वहाँ की जे जगह बनलै तो उब कहला मिथिला
0: वाह उनकर नाम भेलै मिथिला और मिथिला कुमारी के वही परंपरा में ओगा बढ़ि कऽ ओगा चलि कऽ हुनकर वंशज के रूप में विदेह महाराज भेलखिन अच्छा एक और कन्फ्यूजन छै अविनाश जी जे अगर पर किछु प्रकाश डालि पेबै अपने कि बहुत लोक सब से हमरा भेंट भेला जे कहै छथिन जे जनक जे छै से टाइटल छै जनक मात्र केवल सीता जी के पिताजी के नाम नहीं छे ता एके विषय में किछ की आइडिया है अहाँ के
1: हां बिल्कुल सही जनक जे छे ने वहां के केले की मिथिला जे धरती बन ले बुझलिए ना ते एक बस एहन नहीं राज बन ले जे में बस सिर्फ लोग रहे छे
0: हां
1: वहां पर एहन व्यवस्था केल गेले की जे बहुत ही ज्यादा विद्वान जे होते जे बहुत ही समझदार होते बहुत ही ज्यादा हर एक भौतिकवादी चीजों से उठकर जे अपन राजकाज करते ओकरे सबके ई टाइटल भेटते तो उ जनक जे भेलखिन ओ उनकर टाइटल भेले और वहां के जित्ते लोग सब भेलखिन ओ जनकवासी भेलखिन और उनके पुत्र जे भेलखिन उन जानकी भेलखिन
0: उन ओत तक पहुंचा हूं इससे पहले हमरा पास एक और प्रश्न है आके ले क्या कि यहां बहुत सुंदर ढंग से अगर विश्लेषण कर रहल छी यार ई काफी इंटरेस्टिंग बुझा रहल है हमरा जे महाराज जनक जे भेलखिन से भेलखिन जे सीता जी के पिताजी रहथिन ओ जनक जी रहथिन लेकिन जहन अहाँ इतिहास देखे छे तो एक समय एक कालखंड एहन अबे छे जाय में अष्टावक्र नाम के योगी जे छथिन से अबे छथिन उनका जनक महाराज के अथी में राजमहल में तो ओ जे कथा छे से कि ई सीता जी के माता जी के सीता जी के जे पिताजी रहथिन राजा जनक हुनकर दरबार में अबे छथिन कि ओइसा पहिने कोनो महाराज के दरबार में आयल रहथिन अइ के विषय में कुछ जानकारी है अपने के पास
1: हां हमरा ख्याल से त ओ जे अष्टावक्र जी एलखिन तो जनक जी के दरबार में एलखिन और ओहो अष्टावक्र जी अइला एलखिन कि जे उनका पिताजी के कैद कॉलिन छले कहले कि वहां जे कहली ना कि एक योग्यता और शिक्षा एक बस कमाई के जरिया नहीं छले एक मेन स्ट्रीम छले वहां पर शास्त्रार्थ के बहुत बड़ा विधान छले और बहुत एक बेर शास्त्रार्थ जे जीत लेल के उनका तो बहुत सारा धन और गाय सम्मान सब तो मिलवे करे छले प्लस अगर गलती हार गेली तो एक तरह से सजा भी मिले छले
0: तो ई शास्त्रार्थ जे छे से बहुत हाल तक ही चले छले जय में धौत परंपरा पतन धौत परंपरा ई सब बाद में ले जन महाराज दरभंगा के शासन चले ना ऐसा विषय में सोम सब बात करब क्या कि ई पूरा एकटा ई जे ई जननाय बहुत आवश्यक छे श्रोतागण के लेल क्या कि मिथिला के अई तरह से हम सब नहीं देखल जे या मिथिला के मात्र हम सब माता जानकी के नाम से जने छे महाराज जनक महाराज विदेह शास्त्रार्थ परंपरा ऐ सब के विषय में हम सब नहीं जन लिए या त ऐ सब के विषय में सोम सब धीरे-धीरे जाने का प्रयास करब
1: तहे द्वारे हम सब जे है ना ई सब जे कोशिश कर रहल छिए कि सब जान सकिए
0: जी
1: मिथिला जनक तक ही रुके के नहीं छे ओई के आगे भी मतलब कि पहले भी जाने के छे कि विधि के छलखिन मिथि के छलखिन फेर ओई के बाद ओइसे पहले जे छलखिन किन एक छवाकू केना एते फेमस छलखिन और केना जुड़ल छथिन प्लस वहां के जे संस्कृति वहां के जे नॉलेज वाला जे परंपरा छे ओकरा सब के भी बारे में जारी रखे के कोशिश करे छे और आहां सब के श्रोतागण से भी हमर एगो हम्बल रिक्वेस्ट रहत ए बीच में कि आहां सब 17 18 और 19 अक्टूबर के मिथिला रूप में हम सब जे दुर्गा पूजा कर रहल छिए ओय के लेल जुड़ब और आई पर आगे भी और विशेष चर्चा होते
0: ई त सब श्रोतागण के लिए बहुत एकटा अभूतपूर्व आहां सब के लेल अपॉर्चुनिटी है जे समय ई चीज से जुड़ू मिथिला के कनेक सपोर्ट करियो मिथिला के विषय में बुझियो मिथिला केना छै की छै कतेक महान सभ्यता छै कतेक महान संस्कृति रहल छै कतेक महान भाषा छै जे कालांतर में जे देवनागरी के सीढ़ी पर चढ़िकऽ अपन जे तिरुहुत लिपि छै तकरा विसरि देल गेलै एहि सबके विषय में जानय के प्रयास करियो तिरुहुत लिपि के जानय के प्रयास करियो मधुबनी आर्ट के जानय के प्रयास करियो संस्कृति के जानय के प्रयास करियो ओही क्रम में अविनाश जी अगर कनिक आगा चलल जाए तो एहिमे अगर बात कयल जाए जे सीता माता के जन्म तो सीता माता के जन्म एकटा अद्वितीय घटना छे ओही विषय में यदि किछु अपने अगर बाजि सकिए तो ममता जी अगर अहाँ से हम पूछी जे सीता माता के जन्म भेलै अथी में तो ओही के विषय में अपन की जानकारी छे की जानकारी अहाँ श्रोतागण सब संगे साझा करय चाहे छिए
2: बहुत नीक तो सीता माता जी के जन्म के बारे में अगर बात कैल जाए तो ई बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक छै बहुत पावन छै बहुते पुण्य प्रताप के देन मानल जाय छे। एकटा बहुत ही अभूतपूर्व काल्पनीय घटना के तरह देखल जा सकल है कि कहानी एहन कहल जाय छे कि जे जनक जी जे बहुत ही विद्वान रहथिन, ओ हुनका मानल जाय छन कि जे हुनका गुरु के द्वारा अष्टावक्र जी के द्वारा हुनका आत्मज्ञान देल गेल रहन, ओ आफ्टर आत्मज्ञान ओ राज करत रहथिन तो हुनका और भौतिक चीजों से कोनो लगाव नहीं रहन, किछ नहीं रहन, लेकिन तैयो राज करथिन, बहुत निक राज काज चलित रहे। लेकिन ओ बीच में बात एहन भेलै कि जे एक बहुत बड़ा सूखा पड़ि गेलन हुनका राज्य में, जे कि हुनका प्रजा के लेल बहुत ही दुखदायी रहलन, अन्न के बहुत कमी भ गेलन, जैके लेल यज्ञ कैल गेलन तऽ राजपुरोहित और ज्ञाता सब हुनका एडवाइस कैलखिन कि जे अहाँ अगर अपने से राजा अगर अपने से जाकर हल चलेथिन खेत में तो ओई से बारिश भ सकली है, इंद्रदेव प्रसन्न हेथिन, बारिश हेतै जैके बाद से फसल उगतै। तो ई सुझाव के बेस पर राजा गेलखिन और हल चलेलखिन जे कि अखनो मिथिला के सीतामढ़ी एरिया में पड़े छै। जत जखन ओ हल चलेलखिन अपने हाथों से तखन हुनका हल के नोक पर एकटा किछु अटकलन, जाहिमे से हुनका जखन ओकर खुदाई कयल गेलै तऽ ओहिमे से एकटा बक्सा निकललै, जे बक्सा में बहुत ही दिव्य प्रकाश रहै और ओहि बक्सा के जब खोलल गेलै तो एकटा कहल जाय कि जे माता लक्ष्मी स्वरूप एकटा कन्या रहथिन और ओ कन्या के और नहीं माता सीता रहथिन।
0: वाह, तो अपने जे कहलियै क्षमा चाहै छी, कनिक ई मौसम बदल रहल छै, लेकिन ई बहुत जबरदस्त अहाँ एकटा जानकारी देलिए जे सीताजी कियाकि हल्के सीतसँ ओहि चीजके प्रादुर्भाव भेलै तैँ सीता माताके नाम सीता राखल गेलै। हाँ। बहुत बढ़िआँ, बहुत नीक।
2: आओर दोसर नाम हुनकर भूमिजा भी कहल जाइ छै कियाकि ओ भूमिसँ प्रकट भेलखिन। हुनकर जन्म जे एकटा नेचुरल प्रोसेस छै ओहिसँ नहि भेल छनि, ओ भूमिसँ प्रकट भेल छथिन, तैँ दुआरे हुनका भूमिजा भी कहल जाइ छै। और माता सीता मैथिली भी कहाइ छथिन तऽ हुनका अनेक नाम छनि। अहिके साथ माता सीता जखन माता सीता के जन्म के बाद फिर हुनका राज परिवार में तीनटा और पुत्री के जन्म भेलन, जेके वजह से माता सीता चारि बहिन भेलखिन। और आगा जाकर वो राज्य बहुत ही सम्पन्न भेलन, बहुत फसल भेलन, बहुत ही ज़्यादा सब किछ एलन, कियाकि माता सीता स्वयं लक्ष्मी रूप में एलखिन तो राज्य बहुत ही सुख सम्पदा से परिपूर्ण भ गेलै।
0: तो जहिना माता सीता के प्रादुर्भाव से मिथिला सम्पन्न भ गेल, तहिना कोनो मैथिलानी अपन परिवार के सुखिया सम्पन्न करै छथिन। ई विषय एहन छै जे अहाँके इमोशनल सेहो कऽ देत, ई बहुत भावुक विषय छै। एहिपर एक दिन चर्चा हेतै, मैथिलानी के जे अथी छनि अपन अपन परिवार के सजावा में सवारा में जे ड्यूटी होइ छनि, आ कोन तरह सँ ई पछिला कई हजारों साल सँ मिथिला के जे महिला सब छथिन, जाहिमे किछु नाम तऽ काफी फेमस छै, ओहिके विषयमे सेहो बात करब हमसब अभीके बाद। लेकिन एखन एकटा ब्रेक लै छी आओर फेर चलै छी, ब्रेकके मतलब हम एकटा गाना अहाँ सबके सुना दै छी आओर फेर ई जानकारी जे छै सिलसिला जे छै से जारी रहतै।

फिर से स्वागत है अपने सबके और अहाँ सबके जे हम सब आई जे हम सबके टॉपिक है से विषय में बात कर रहा छी वो है मिथिला के इतिहास और हमरा संगे बहुत विशिष्ट गेस्ट छथि श्री अविनाश कुमार जी और ममता कुमारी जी और दूटा और गेस्ट छथि नवनीत झा और संध्या झा सबसे हम सब बातचीत करते रह तो फिर सलाह चले इनका इससे पहले कि आगा बढ़ी यदि एक क्विज हमरा सब हमरा पास है आयकर विजेता के जे छे से भेटत बहुत विशिष्ट पुरस्कार आवा वाला दुर्गा पूजा और मिथिला महोत्सव में तो प्रश्न ये अहाँ सब यदि सावधान छी अपन पेन पेपर उठा लिया सावधान छी तो महाराज मिथि के पूर्व नाम की छलेन है महाराज मिथि के पूर्व नाम की छलेन है जे विजेता छी हुनका सबके भेटत एकटा डांडिया के टिकट 18 तारीख शाम में 5 बजे से 8 बजे मिथिला कल्चरल सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रहल अछि डांडिया नाइट्स ओहिमे एकटा टिकट अपने सबके भेटत तो चलू एहि बातचीत के आगा बढ़ाबै छी अविनाश जी तो अहाँ कहलिए जे जे दुनू गोटे एक दोसर के श्राप दऽ देलखिन तो केना अहाँ बुझै छी चीज के केना देखै छी जे आइ क्या कि आइयो के समय में लोक सब ततेक अहंकार अभिमान सब कल्चरल सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रहल अछि डांडिया नाइट्स ओहिमे एकटा टिकट अपने सबके भेटत तो चलू एहि बातचीत के आगा बढ़ाबै छी अविनाश जी तो अहाँ कहलिए जे जे दुनू गोटे एक दोसर के श्राप दऽ देलखिन

0: কিছু আর কিছু গুড় এমে জ্ঞান ছুপল ছে
1: বিলকুল এমে বহুত বড়কা জ্ঞান ছুপল ছে কি দেখিও আহা চাহ কই ভি আদমি কতবো বড়কা ভ সকলাইয়া কতবো জ্ঞানী কতবো কতবো মহান লেকিন ওইমে শালীনতা নেই ছে পেসেন্স নেই ছে আর সব सही तरीका से अकोमोडेट करे के क्षमता नहीं छे तो मतलब कि सब खराब छे और एक डायरेक्ट एग्जांपल छे और तें द्वारे आगे चल के भी है ने भले कि मिथिला के सब लोग के बात में इतने मिठास की कोई की कहो लेकिन
0: लेकिन तो सत्य चाह के मिथिला भाषित ते मीठ छे यहां ककरो सब क्रोधित छे ककरो सब खिसियालो छे तो यो बुझा जा रे हां प्यार से बात कर रहल छे
1: बिल्कुल
0: हमर माताजी आए तक हमरा कहियो तू कह करने बात करके तुम कह करने बात करके जना हिंदी में तुम होय छे हमरा सब अहीं अहीं कह के बात करे छे मतलब आप कह के बात करे छे
1: बिल्कुल ई तो बहुत ही बड़का आ टॉपिक छोड़ दिलिए केले की इत्ते मीठ भाषा छे ना कि गालियो मीठ लगे छे और तें द्वारे वहां पर जे भगवान लिए राम छथिन राम जी छलखिन उनका गाली से स्वागत होय छे
0: अरे वाह
1: भगवान भोलेनाथ के आइयो इत्ते गाली वहां देल जाय छे कि की कहो और गाली गाली नहीं छे वहां भक्ति के एक तरीका छे वहां पर
0: जी
1: उनकर जे सच्चाई छे ओकर जे कोनो बात छे उनकर दिखावे के तरीका छे और गाली में यहां पर बनावटी चीज नहीं छे बिल्कुल एक अलग प्रोस्पेक्टिव छे
0: जी
1: जे सच्चाई से सामना करवे छे त और अही के साथ हमेशा एक ग्राउंडेड लैंग्वेज छे जे में सबके जोड़ के रखे छे त अहां के सवाल के जवाब दे छी जे वो घटना भेले जैमे वशिष्ठ जी श्राप दौ दिलखिन निमी के और निमी श्राप दौ दिलखिन उनका कि जो दुनू बिना शरीर के भ जाए तई के कॉन्सिक्वेंस में ई भेले कि दुनू के आदमी दुनू के शरीर नहीं भेटले फिर वो भटके लगलखिन दुनू भटकते रह गलखिन और वशिष्ठ जी के नया शरीर मिल गले वरुण मैत्री के थ्रू
0: जी
1: लेकिन निमिष जी आई की आइयो भले ही अहाँ मिथिला के छी या नहीं छी लेकिन अहां के अगर पलक झपके हा त उन निमि महाराज अहां के आंख पर विराज छथिन और अहां सब आदमी मैथिल भ गेले
0: अरे बस जे को सुन रहल छी अहां सब गोटे मैथिल छी कोनो भाषा में बात करी लेकिन पलक तो सब गोटे झपके छी अहां सब आ यदि पलक झपके छी मतलब अहां सब गोटे मैथिल छी
1: बिल्कुल
0: त यहां सब गोटे के प्रोग्राम अछि एहि पर ए प्रोग्राम के कनी आगा बढ़ के सपोर्ट करियो तो ये बहुत बढ़िया पर जानकारी दिलिए अविनाश जी तो निमि महाराज के कारण जे छे से जे पलक झपके छो का नाम निमिष होय छे और निमिष जे छे से समय के सबसे छोट
1: यूनिट
0: छे घंटा मिनट सेकेंड सब बहुत पहने लाखों साल पहने हजारों साल पहने लाखों साल पहने समय के यूनिट छले या निमिष
2: आई जकरा लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या ब्लिंक ऑफ एन आई कहे छथिन वो मिथिला में निमिष के नाम पे महाराज निमि ऋषि निमि स्थापित किया दलकिन रहे बहुत पहले
0: तो मिथिला एतेक पुरान छे और मिथिला एतेक महान छे जी तो ये बहुत बहुत बढ़िया है आई चर्चा के हम सब और जारी रखब तो जहन हम सब बात करे छी तसा जहन हम सब आगा बढ़े छी और माता सीता के जन्म होय छन तो ई कथा छे जे श्री राम अयोध्या के में हुनकर जन्म भेलन और चल के मिथिला गेलखिन तो चल के किया मिथिला गेलखिन और मिथिला से किया एतेक सिग्निफिकेंस मिथिला से भगवान राम किया जुड़ल छथिन जतबा महत्व श्री राम के देल जाय छन जतबा महत्व श्री राम के छन ओतबा महत्व माता जानकी के सेहो छन तो कोनो प्रकार से जे छे से मिथिला अयोध्या से कम नहीं अछि तो और कनी जने छे ममता जी अहाँ यदि हम ई पूछी जे श्री राम भगवान के जन्म भेलन अयोध्या में और मिथिला में केना जाकर हुनकर विवाह भेलन की कोन घटनाक्रम एहन भेले जाय के चलते हुनका मिथिला आवा पड़लन आ हुनकर विवाह भेलन
3: तो बात एहन छै कि भगवान राम

0: जैसा विश्व विधाता छथिन जखन अवतरित भेलखिन अयोध्या में तो ओ एकटा प्रोसेस एकटा पर्पस लऽ कऽ एलखिन और ओही के हुनका लीला के जे घटनाक्रम रहै ओहिमे ई कहल जाए कि इंक्लूडेड रहै कि जे हुनका मिथिला आबयके छै ओकर रीजन मेन रीजन ई बनल रहै कि जखन अपन शिक्षा पूरा कऽ कऽ भगवान राम वापस अयोध्या गेलखिन ओहिके बाद ऋषि विश्वामित्र एलखिन राज्यमे और राजा दशरथ से कहलखिन कि हमरा अपन यज्ञ पूरा करयके अछि जाहिके लेल हमरा यज्ञमे बहुत ज्यादा बाधा आबि रहल यऽ बहुत सारा बाधक सब बहुत सारा राक्षस सब आबि कऽ हमरा यज्ञ नहि पूरा करय दैए जाहिके वजहसँ हमरा यज्ञ रक्षक चाही अहाँ अपन दुनू पुत्र सुपुत्र दिया दू राम और लक्ष्मण जे हमरा यज्ञ रक्षा करथिन और हम अपन यज्ञ पूरा करब एहिके लेल दशरथ जी मानि गेलखिन और राम और लक्ष्मण गेलखिन विश्वामित्र जी के साथ हुनकर यज्ञ रक्षा करयके लेल तऽ एही ओहि घटनाक्रममे भेलनि कि जे एकटा राक्षसी तारका के बध भेलनि जे कि एके बाणमे मारि देलखिन जे बहुत बड़ा बड़ा सूर वीर सब मतलब डरैत रहथिन नहि भेल नहि मारि पेने रहथिन तऽ ओ भेल तारका बध के नाम से प्रसंग छै
1: तारका बध कतऽ भेल छै मिथिला मे भेल छै कि मिथिला से पहिने भेल छै
0: ओ मिथिला से पहिले भेल छै तखन ओ एकटा मानि सकै छी कि जे बॉर्डर पर भेल छै
1: जे आइ काल्हि के जे बक्सर छै ओहि एरिया के कहल जाइत रहै पहिने एकटा खास किछु नाम रहै और ओहि एरिया मे जे छै से राक्षस सब के बहुत आतंक रहै ताड़का या आतंक सब आतंकी सब के सरदार नहीं रहते
0: बिल्कुल बिल्कुल और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मानल जाय छल कि राक्षस कुल में और बहुत ज्यादा आतंक फैला कर रखने रहथिन इतने बड़का आतंक रहे कि जे विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र जी के मतलब अपन थर्ड आई से देखो पड़लन कि जे के मार सकलन है तो ओके बाद वो पद यात्रा जखन विश्वामित्र जी के अथी एलन इन्विटेशन कहल जाए आमंत्रण एलन जनकपुर से ओहि राज्य में जो उत्सव रहे ओहिमे भागीदारी बनय के लेल और उत्सव रहे माता जी के स्वयंवर तो जे के लेल हुन अपना संगे दोनों शिष्य के लेने गेलखिन राम और लक्ष्मण दोनों के जे जे बनलन पदयात्रा अयोध्या से
1: एहि टॉपिक पर हमर सब के दोसर अगला एपिसोड जारी रहते अगला बेर हम सब सेहो एहि विषय में बात करब क्योंकि मिथिला के इतिहास बहुत महान छै बहुत चीज एहन छै जे अपने सब के बुझनाय आवश्यक छै तो ई हमर सब गेस्ट जे छै से बनल रहता तो अगला बेर हम सब फिर भेंट करै छी लेकिन अहाँ सबके क्याकि समय के अभाव भ रहल है अहाँ सबके छोड़ल नहीं जा रहा छी हम एकटा बहुत सुंदर एकटा मिथिला के गीत से सुनियो आकर आनंद लिया
2: मलत कुरुश

0: Radio 2098.5 FM Community Program.
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: Swagat hai Darpan Hindi Karyakram mein. Aap sunenge samachar, vichar, sangeet aur samajik suchnaye.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: Namaskar shrotao. मैं रंजना रमन रेडियो दर्पण के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आइए सुनते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के आज की प्रमुख खबरें। आज यानी 6 सितंबर 2026 रविवार, युगाद 5128, विक्रम संवत 2083, भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। सबसे पहले सुनते हैं भारत की खबरें। एयर इंडिया फ्लाइट में एक्सेप्शनली रेयर तकनीकी विफलता। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट में एक साथ तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए, जिसे विशेषज्ञ बेहद दुर्लभ घटना बता रहे हैं। सौभाग्य से विमान सुरक्षित उतारा गया, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद एयर इंडिया ने संबंधित पायलट को हटा दिया। भारत की जीडीपी ग्रोथ उम्मीदों से बेहतर। भारत की ताजा जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट ने वैश्विक आर्थिक दबावों के बावजूद मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में रही। इसरो ने EOS-05 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत ने अपना अब तक का सबसे भारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा। यह उपग्रह मौसम, आपदा प्रबंधन और भू निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिल्ली में भारी बारिश और फ्लाइट डायवर्शन। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश और तूफान के कारण कई उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी और आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया। इससे हवाई यातायात और शहर के सामान्य जीवन पर असर पड़ा है। नेपाल में बाढ़ भारत के लिए चेतावनी। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर विशेषज्ञों ने चेताया कि इसका असर भारत के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और नदियों पर भी पड़ सकता है। FBI wanted fraudster की पंजाब में गिरफ्तारी। जालंधर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा है जो अमेरिका में $6 लाख की धोखाधड़ी के मामले में FBI द्वारा वांटेड था। सोनिया गांधी की आत्मकथा अब हार्पर कॉलिंस प्रकाशित करेगा। पेंगुइन द्वारा संपादकीय मतभेदों के चलते पीछे हटने के बाद अब हार्पर कॉलिंस इंडिया सोनिया गांधी की आत्मकथा 10 नवम्बर को प्रकाशित करेगा। जानते हैं अब ऑस्ट्रेलिया की खबरें। नेपाल तिब्बत बाढ़ में लापता ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की खोज तेज। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद 43 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई रेस्क्यू टीम नेपाल पहुंच चुकी है और खोज अभियान तेज किया गया है। यह खबर पूरे देश में चिंता और चर्चा का विषय बनी हुई है। बाथला ग्रुप का वित्तीय संकट, सिडनी हाउसिंग मार्केट पर असर। सिडनी की बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी बाथला ग्रुप गंभीर वित्तीय संकट में है। अगर कंपनी को तुरंत फंडिंग नहीं मिली तो इसे लिक्विडेशन में जाना पड़ सकता है। इससे सिडनी के हाउसिंग मार्केट में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। स्मार्ट ग्लासेस पर संपादित प्रतिबंध की चर्चा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि फिलहाल स्मार्ट ग्लासेस के आयात पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर बहस तेज है। यह तकनीक बच्चों और युवाओं पर प्रभाव को लेकर भी चर्चा में है। सिडनी में शार्क अटैक, महिला की चमत्कारिक बचत। सिडनी की एक महिला पर 4 मीटर लंबे शार्क ने हमला किया, लेकिन उसने बहादुरी दिखाते हुए खुद को बचाया। राहगीरों की मदद से उसकी जान बची। यह घटना सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में लगातार चर्चा में है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया उपचुनाव में वन नेशन की जीत। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सीक्रेट हार्बर उपचुनाव में वन नेशन पार्टी ने जीत दर्ज की है। इससे राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा हुई है और विश्लेषक इसे पार्टी की बढ़ती पकड़ के संकेत के रूप में देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में एंटी बॉय पाठ्यक्रम पर बहस। नेशनल्स नेता मैट कैनवन ने कहा कि स्कूलों में पढ़ाया जा रहा कंसेंट एजुकेशन लड़कों को गलत दिशा में ला रहा है। इस बयान ने शिक्षा नीति, सोशल मीडिया एल्गोरिदम और युवा व्यवहार पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। कॉर्पोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट में 100 मिलियन डॉलर का घोटाला, शेयर 80% गिरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ट्रैवल सर्विस कंपनी कॉर्पोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट के खिलाफ बड़े वित्तीय घोटाले की जांच चल रही है। खबर सामने आते ही कंपनी के शेयर में 80% से अधिक की गिरावट आई। यह मामला कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठा रहा है। आइए अब जानते हैं दुनिया की कुछ खबरें। नेपाल हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों का चमत्कारिक बचाव। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद हाइड्रो पावर टनल में कई लोग फंस गए थे। 9 दिनों बाद 2 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया, जिसे मानवता और साहस की बड़ी जीत बताया जा रहा है। यह घटना वैश्विक मीडिया में लगातार सुर्खियों में है। ईरान पर अमेरिका का दबाव बढ़ा, पिकेक्स माउंटेन पर संभावित हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संकेत देते हैं कि अमेरिका जल्द ही ईरान के पिकेक्स माउंटेन को निशाना बनाने जा रहा है। यह बयान मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र है। रूस का यूक्रेन सुरक्षा मुख्यालय पर ड्रोन हमला। कीव में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU मुख्यालय पर ड्रोन हमला किया, जिससे संघर्ष और तेज हो गया। यह हमला यूरोप और अमेरिका में सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ब्रिटेन में गिनेल फराज की पार्टी में बड़ा घोटाला। रिफॉर्म यूके पार्टी के शीर्ष अधिकारियों को विदेशी फंडिंग से जुड़े एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद निलंबित कर दिया गया है। इससे ब्रिटेन की राजनीति में हलचल मच गई है और पार्टी की छवि पर बड़ा असर पड़ा है। रोमानिया में एंड्रयू टेंट पर नाबालिगों की तस्करी का आरोप। रोमानियाई अभियोजकों ने एंड्रयू टेंट पर नाबालिगों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अभियोग दायर किया है। यह मामला सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों के बीच व्यापक चर्चा में है। मैक्सिको में 17 टन मेथ की ऐतिहासिक बरामदगी। मैक्सिको की सुरक्षा एजेंसी ने सिनालोआ में 3 गुप्त लैब से 17 टन मेथामफेटामाइन बरामद की है। यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी में से एक है और वैश्विक एंटी ड्रग एजेंसियों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इंडोनेशिया में जंगल की आग। सिंगापुर से 4 गुना क्षेत्रफल जितना इलाका जला। इंडोनेशिया में लगी भीषण जंगल के आग ने विशाल क्षेत्र को प्रभावित किया है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे का संकेत मान रहे हैं। यह खबर पर्यावरण और एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख चर्चा का विषय है। इसी के साथ आज के समाचार यहां समाप्त होते हैं। सुनते रहिए दर्पण रेडियो। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 MHz पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं मैं प्रदीप कुमार सिन्हा, शैलजा जी और आशिमा जी। आप सभी का हमारे रेडियो प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नेपाल त्रासदी के बारे में। नेपाल जितने त्रासदी इतनी भयंकर रही कि वहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई, तो हमारी शुभकामनाएं ये हैं कि वहाँ पर बाकी लोग जो मिसिंग हैं वो भी मिल जाएं, और हमारी श्रद्धांजलि उन लोगों को जिनको सदगति प्राप्त हुई है। तो हम आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ लाए हैं। शैलजा जी आज के कार्यक्रम में हमारे एक खास मेहमान हैं
4: जी,
3: उनसे हम मिलवाएंगे
4: बिल्कुल।
3: और इसके अलावा हमारे एक रंजना जी ने एक वार्ता भेजी है और सरिता जी ने भी वार्ता भेजी है, तो हम उसके बारे में तो बात करेंगे। और हम आज फादर्स डे है, सभी फादर्स को, सभी पापा लोगों को हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आपका दिन बहुत ही सुंदर बीतेगा अपने बच्चों के साथ। तो हम ये भी चाहते हैं कि यदि आप अपने पापा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं रेडियो पर ऑनलाइन, तो हमें फ़ोन कीजिएगा। नंबर है 04133859776। लेकिन आप फ़ोन करने से जो हमारा भजन का कार्यक्रम पूरा हो जाए उसके बाद करिएगा। पापा से संबंधित हम आज के गीत भी रखे हैं, और इसके अलावा हमारी जो गेस्ट हैं वो खास गेस्ट हैं, बहुत सारा सोशल काम कर रहे हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करते जाएंगे और आपसे भी बातचीत करेंगे। आशा है कि आप हमारे कार्यक्रम में सहयोग देकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
4: अश्वता एक बहुत सुंदर कविता है ओम व्यास की लिखी हुई, वो आपको सुनाएंगे पिताजी के बारे में।
3: तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का विचार।
2: नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है आज का विचार। आज के विचार की प्रेरणा मैंने श्री कृष्ण के जीवन से ली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन उलझ जाए तो उसे प्रेम, धैर्य और सही कर्म से साधो, यही जीवन का सच्चा योग है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन, मन को स्थिर रखकर सही निर्णय लेना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। उन्होंने युद्ध भूमि में भी अर्जुन को अहिंसा नहीं बल्कि धर्म के लिए आवश्यक कर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने गोकुल में प्रेम सिखाया, मथुरा में साहस, द्वारका में नेतृत्व और कुरुक्षेत्र में ज्ञान। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो अपने भीतर के भय, क्रोध और भ्रम को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। धन्यवाद।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomk.org.au। धन्यवाद
1: दोस्तों, समय है अब हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मिलवाने का। शैलजा जी, आप गेस्ट से मिलवाइए।
2: यस सुबह राव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, किसी भी समुदाय के समुचित व संगठित विकास के लिए समाज के कुछ दिग्गज निस्वार्थ समाज सेवक सूत्रधार होते हैं, जिनका योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और ये आवश्यक भी है। और आजकल और भी इसकी आवश्यकता बढ़ गई है जब हम विदेश में रहते हैं, विशेषकर विदेश प्रवास के पहले वर्ष में। तो हम आज आपको ऐसे ही प्रभावशाली दिग्गज सूत्रधार से परिचित करा रहे हैं जिन्होंने एक दशक पूर्व भारत ही नहीं अन्य देशों से आए प्रवासियों की अनेक चुनौतियों में हाथ बटाने का निश्चय किया था। श्रोताओं, मुझे आश्चर्य होता है कि वह आपको भी होगा कि इस क्षेत्र में सुब्बा जी वेरिगोंडा राव ने अपने अथक प्रयासों से विशेषज्ञ उपलब्ध किए हैं हर विषय में, हर क्षेत्र में। तो हम आपका परिचय आज आपका करा रहे हैं श्री सुब्बा राव वेरिगोंडा जी से, जिनकी जो पहुंच है वो इतनी विस्तृत है कि मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है सिडनी में और पूरे न्यू साउथ वेल्स में जहां की उनकी पहुंच न हो। तो सुब्बा राव जी, आप अपने विषय में कुछ बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ पर हैं और किसने आपको इतना प्रेरित किया है इस समाज सेवा के लिए जिसमें आपने पूरे अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है।
3: डॉक्टर शैल चतुर्वेदी जी, मुझे बेहद बहुत खुशी है आज आपने हमें यहाँ इनवाइट किया दर्पण रेडियो कार्यक्रम में। सब श्रोताओं को सबसे पहले हमारे इंडियन सपोर्ट सेंटर की तरफ से नमस्कार एंड हैप्पी फादर्स डे टू एवरीबॉडी। मेरा जो सिडनी आना हुआ 1989 में हुआ है
2: जी।
3: उससे पहले काफ़ी साल इंडिया में हमने काम किया
2: जी।
3: 1971 से लेके एटॉमिक एनर्जी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फिर MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। ये करने के बाद
1: सुमराव जी थोड़ा सा माइक्रोफोन के पास आ जाए।
3: 7 साल कंप्यूटर कंपनी में काम करे हमने, फिर मलेशिया सिंगापुर में 4-5 साल रह के ऑस्ट्रेलिया में 1989 में आए। तब से हमारा फंडामेंटल प्रोफेशन जो है वो है IT इंडस्ट्री में काम करते हैं
2: जी। हाँ,
3: समाज सेवा की बात जब हुई तो हमारी शुरुआत हुई थी 1992 में
2: जी।
3: एंड एट द टाइम जो शुरू में अलॉन्ग विथ माई वाइफ डॉक्टर सरयू राव वो हम लोग तेलुगु एसोसिएशन में काम करना शुरू करे
2: जी।
3: तेलुगु एसोसिएशन में काम करने के बाद 2 साल में पहला प्रेसिडेंट रहा वहाँ पर। फिर उसके बाद मौका मिला एक इंडियन अम्ब्रेला बॉडी शुरू करने का
2: जी।
3: वो हमने शुरू किया था मार्च 1994 में। पहले 2 साल आई वॉज द प्रेसिडेंट देर, फिर उसके बाद 10 साल आई वॉज अ पब्लिक ऑफिसर, फिर उसके बाद 4-5 साल थोड़ा आराम किया। फिर समाज ने कहा नहीं भैया आप आराम नहीं कर सकते हो, आप वापस आ जाओ कम्युनिटी में। सो एट दैट टाइम वी हैड टू क्रिएट काउंसिल ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियंस 2010 में। वो 4-5 साल चलाने के बाद 2015 में हमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चांस मिला when I was talking to a member of the parliament,
2: जी.
3: they wanted to really help the Indian community.
2: Uh-huh.
3: Then humne kaha chalo theek hai dekhte hain soch samajh ke humne kaha chalo theek hai we want one location ek jagah aisi ho jo koi bhi apna bharatvasi jo ho
2: जी.
3: I'm an Indian I need support
2: yes,
3: if one point stop
2: bilkul
3: so with that kind of thinking hame प्रेरणा मिली चलो शुरू तो करते हैं ऐसा कोई सेंटर फिजिकल सेंटर था नहीं सिडनी में तो था नहीं मेरे ख्याल
2: बिल्कुल नहीं था
3: हाँ जी फिर हमने गवर्नमेंट का थोड़ा ग्रांट से ये हमने इसको शुरू किया मार्च 2015 में
2: राइट
3: तब से अभी 11 साल निकल गए
2: और आपकी जितनी सेवाएं बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि आपने मुझे लगता है कि पहले तो आपने एक बड़ा ही जो हेडिंग था माइग्रेंट सेटलमेंट तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं तो इससे आपने शुरू किया था तो उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं माइग्रेंट सेटलमेंट में
3: देखिए सबसे पहले उस वक्त दिमाग में यह आया कि हम लोगों ने काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं बॉलीवुड सेंटर्ड हैं दिवाली हुआ होली हुआ कल्चरल प्रोग्राम्स वो तो बहुत ज़रूरी हैं वो तो चल रहे थे काफ़ी लोग कर रहे थे
2: बिल्कुल कर रहे
3: हैं लेकिन डे टू डे ग्रास रूट लेवल सपोर्ट जिसको कहते हैं उस पर जब इंसान यहाँ सिडनी आता है ही डज नॉट नो कहाँ जाएँ क्या करें किससे बात करें तो इसलिए जैसे ही लोग देखिए सबसे पहले उस वक्त दिमाग में यह आया कि हम लोगों ने काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं बॉलीवुड सेंटर्ड हैं दिवाली हुआ होली हुआ कल्चरल प्रोग्राम्स वो तो बहुत ज़रूरी हैं वो तो चल रहे थे काफ़ी लोग कर रहे थे
2: बिल्कुल कर रहे
3: हैं लेकिन डे टू डे ग्रास रूट लेवल सपोर्ट जिसको कहते हैं उस पर जब इंसान यहाँ सिडनी आता है ही डज नॉट नो कहाँ जाएँ क्या करें किससे बात करें तो इसलिए जैसे ही लोग सपोर्ट जिसको कहते हैं उस पर जब इंसान यहाँ सिडनी आता है ही डज नॉट नो कहाँ जाएँ क्या करें किससे बात करें तो इसलिए जैसे ही लोग चल रहे थे काफ़ी लोग कर रहे थे
2: बिल्कुल कर रहे
3: हैं लेकिन डे टू डे ग्रास रूट लेवल सपोर्ट जिसको कहते हैं उस पर जब इंसान यहाँ सिडनी आता है ही डज नॉट नो कहाँ जाएँ क्या करें किससे बात करें तो इसलिए जैसे ही लोग
2: बिल्कुल कर रहे
3: हैं लेकिन डे टू डे ग्रास रूट लेवल सपोर्ट जिसको कहते हैं उस पर जब इंसान यहाँ सिडनी आता है ही डज नॉट नो कहाँ जाएँ क्या करें किससे बात करें तो इसलिए जैसे ही लोग देखिए सबसे पहले उस वक्त दिमाग में यह आया कि हम लोगों ने काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं बॉलीवुड सेंटर्ड हैं दिवाली हुआ होली हुआ कल्चरल प्रोग्राम्स वो तो बहुत ज़रूरी हैं वो तो चल रहे थे काफ़ी लोग कर रहे थे
2: बिल्कुल कर रहे
3: हैं लेकिन डे टू डे ग्रास रूट लेवल सपोर्ट जिसको कहते हैं उस पर जब इंसान यहाँ सिडनी आता है ही डज नॉट नो कहाँ जाएँ क्या करें किससे बात करें तो इसलिए जैसे ही लोग सपोर्ट जिसको कहते हैं उस पर जब इंसान यहाँ सिडनी आता है ही डज नॉट नो कहाँ जाएँ क्या करें किससे बात करें तो इसलिए जैसे ही लोग और वहाँ पर काफ़ी सारे वॉलंटियर्स इंटर्न्स जो लोग हैं वो भी वहाँ पर आपको मिलेंगे जाते ही आपको आपके साथ बातचीत करके आपको जानकारी देंगे
1: अच्छा सुब्बा राव जी
3: जी
1: ऐसा है कि हम थोड़ा सा आप बहुत दिनों के बाद हमारे कार्यक्रम में आए हैं तो हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे आप बताइए भारत में आप कहाँ से हैं
3: ओके भारत में मेरा जन्म हुआ था ए प्लेस कॉल्ड गोलनापल्ली इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट विजयवाड़ा के पास
1: अच्छा अच्छा
3: फिर व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड फिर हम लोग फादर आर्मी में थे तो हम लोग दिल्ली चले गए
1: अच्छा
3: दिल्ली में हमने पढ़ाई करी थी एक आंध्रा स्कूल करके तिलक ब्रिज के पास वहाँ पढ़ाई करके फिर आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वहाँ करने के बाद फिर हम बम्बई चले गए टू वर्क विथ एटॉमिक एनर्जी
1: अच्छा
3: एंड दैट्स हाउ माई प्रोफेशन स्टार्टेड
2: तो इसीलिए आपकी हिंदी इतनी अच्छी है
1: हाँ इतनी अच्छी है आप सब जो है रहे हैं तो ऐसा करते हैं शैलजा जी हम थोड़ा सा इसमें आज का जो हमारा थीम है फादर्स डे वाला उसको इन्वॉल्व करते हुए हम सुब्बा राव जी से पूछते हैं आपको अपने पापा की कैसे याद है और एक कुछ थोड़ा छोटी सी घटना बताइए
3: यू टच माई हार्ट माई फादर हम मेरे पापा जो हैं वो इंडियन आर्मी में थे एंड इन वन ऑफ हिज पोस्टिंग्स इन 1959 उनका पोस्टिंग हुआ था दिल्ली में تو اس لیے اس وقت ہم سب لوگ گاؤں میں جو تھے ہم سب لوگ ان کے ساتھ دلی چلے گئے اینڈ ہی از اے ویری ویری ہارڈ ورکنگ پرسن آرمی میں ہی سروڈ آرمی ان کشمیر کافی سال وہاں پر کشمیر ادھام پور جیسے جگہ پہ انہوں نے کام کیا پھر ہی لوڈ ہز چلڈرن سو مچ جیسے ہم دلی پہنچ گئے ایک ہمارا ایجوکیشن And he was so passionate about every day ghar mein hum logon ko us zamane mein
2: ji
3: ek grammar book hota tha called Renan Martin pata nahi aap log shayad jante honge Renan Martin aage se peeche har roz ek ghante ka
1: drill kitne bhai bhai the aap
3: hum log teen bhai hai mera ek bada bhai hai india mein wo bhi abhi army se retire ho gaye hain और एक मेरा छोटा भाई है वो है अमेरिका सैन डिएगो में हम बीच के हैं
1: एक्चुअली आशिमा जी इससे रिलेट कर सकती हैं कि उनके पापा भी
4: मेरे फादर भी इंडियन आर्मी में थे एएमसी में आर्मी मेडिकल
3: कोर में
2: तो आपका भी वही डिसिप्लिन था
3: डिसिप्लिन बहुत सिखाया उन्होंने एब्सोल्युटली
1: अच्छा शैलजा जी आपके पास एक सुंदर सी कविता थी वो सुना दीजिए फिर उसके बाद एक सुंदर सा गीत सुनाएंगे और अपने बातचीत आगे बढ़ाएंगे
2: तो श्रोताओं आपको फादर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाऊंगी मेरी लिखी हुई नहीं है लेकिन ये इन्होंने लिखी है कवि ओम व्यास जी ने लेकिन मुझको बहुत ही अच्छी लगी पिता रोटी है कपड़ा है मकान है पिता रोटी है कपड़ा है मकान है पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान आप सोचिए कि छोटे चार साल का बच्चा है अपने पिताजी को देखता है कि ये सबसे बड़ी मूर्ति है संसार में पिता रोटी है कपड़ा है मकान है पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है अप्रदर्शित दिखाते नहीं है वो लेकिन माँ तो दिखा देती हैं लेकिन पिता नहीं दिखा पाते हैं पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार हैं पिता तो बच्चों का इंतज़ार हैं पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं
3: क्या कहा
2: पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं पिता से परिवार में प्रतिपल राग है पिता से प्रति परिवार में प्रतिपल राग है पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है पिता है रोटी कपड़ा मकान है पिता छोटे से परिंदे का आसमान है
1: बहुत सुंदर शैलजा जी बहुत सुंदर अब इसी के साथ साथ हम एक गीत सुन लेते हैं
2: बिल्कुल

दोस्तो सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है थैंक्स अ लॉट वी मिस यू हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: Yeta hamari sponsor Curry Master ka sandesh.
2: Acha aapse ek question puchna jo Indian support center aap chala rahe hain wo kaise aap vyavasthit karte hain kaise staff employ karte hain kya volunteers कैसे लाते हैं?
3: Okay, ये जो है people supporting these of course is a big challenge. तो हमें वहाँ पर क्या होता है there आजकल जो international student community जो है वहाँ से काफी लोग internship यानी कि training यानी कि job ready program के लिए आते हैं.
4: जी.
3: वो दे रहे हैं उनके लिए हम लोग उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए ये हमारे एक्टिविटीज में उनको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देके काम कराते हैं. और दूसरी बात यह है कि देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर हुज हस्बैंड्स आर गेनफुली एम्प्लॉयड उनके वाइफ्स जो हैं दे आर हाईली एजुकेटेड हाईली टैलेंटेड और वो लोग जो हैं देखते हैं कुछ काम वॉलंटियरशिप में मिल जाए या कुछ रियल जॉब मिल जाए पेड जॉब तो वो लोग भी आके दे नॉक इट आउट डोर्स. फिर हम लोग उनसे बैठ के बातचीत करके देखते हैं कुछ लोग दे आर हैप्पी टू बी वॉलंटियरिंग टू आवर्स फोर आवर्स सिक्स आवर्स और टू डेज इन ए वीक एंड थिंग्स लाइक दैट. और कुछ लोग जो हैं इनको मिनिमम वेज पे हम रखते हैं. वी का हम लोग कॉरपोरेट लेवल पे वेजेस तो दे नहीं सकते हैं बट मिनिमम वेज लेवल पर भी कुछ लोग जो एक्सेप्ट करते हैं जिनके पास टैलेंट है हम उनको वहाँ पर रख के ये जो जितने प्रोग्राम्स यहाँ पर आज आपसे आपको लिख के दिया हमने उस पर हम लोग उनको यूज़ करते हैं. तो इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट कैंडिडेट बट फिर भी हम लोग कोशिश करके लोगों को एंगेज करके खास करके मैं उनको काफ़ी समय बिता के ट्रेनिंग देता हूँ.
4: आपकी सुबह जी आपकी बहुत बड़ी संस्था है और मुझे लगता है कि इसमें कितने स्टाफ इन्वॉल्व होंगे तो ऑल टुगेदर वॉलंटियर्स एंड पेड स्टाफ कितने लोग इन्वॉल्व हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में?
3: तकरीबन ऑल टुगेदर देयर विल बी 16 पीपल.
4: 16 ओनली?
3: 16 लोग. हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर वेंटवर्थविल में हमारा ऑफिस है इंडियन सपोर्ट सेंटर का वहाँ पर है. बाकी सारा काम वॉलंटियर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हम खुद भी कर लेते हैं थोड़ा डब्बों में थोड़ा बाकी जो संस्थाएं जो हैं लिटिल इंडिया एनएसडब्ल्यू हैरिस पार्क और अभी जो नया जो हमने शुरू किया है मल्टी कल्चरल कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर वो अभी शुरू हो रहा है वहाँ पर भी हमने अभी हायर किया हुआ है. तो 16 लोगों से काफ़ी काम चल जाता है. फिर भी हम लोग वी आर ऑन द लुकआउट फॉर मोर पीपल स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एरियाज लाइक एनडीआईएस.
4: राइट. तो 16 पीपल दे आर फुल टाइम?
3: हाँ,
4: आपका ऑफिस कहाँ है? एक तो मैंने पढ़ा था गिल्बा स्ट्रीट है और दूसरा वेंटवर्थविल है फिर तीसरा आप कह रहे हैं कि हैरिस पार्क में भी है.
3: अच्छा, गिल्बा स्ट्रीट हमने वहाँ पर शुरुआत करी थी 2015 में लेकिन 2018 में वी मूव टू वेंटवर्थविल टू लेन स्ट्रीट पे.
4: तो वो तो कम्युनिटी सेंटर है.
3: हाँ, वो कम्युनिटी सेंटर में नाइसली देयर छोटा सा 2 बेडरूम का वो है उन लोगों ने काउंसिल वालों ने हमें दिया है उन्हें पेड बेसिस ऑफ कोर्स. तो हम लोग वहाँ पर 2018 से ये संस्था.
4: तो कितना बड़ा है वो ऑफिस वहाँ का जो आपको मिला है उसमें?
3: बिग, इज अबाउट 70 square meters डिवाइडेड इनटू 3 2 नॉर्मल रूम्स एंड 1 small room बट दैट इज गुड एनफ बट वी डेफिनेटली नीड मच लार्जर स्पेस. लेकिन
4: yes.
3: हम गुजारा कर रहे हैं वहाँ पर. समटाइम्स ऑन अ नॉर्मल डेज आपको वहाँ पर अंदर जाने की जगह नहीं मिल सकती है व्हेन स्टूडेंट्स. फिर हमने थोड़ा सा एक्सपेंशन के उसमें एक नई जगह ली है उदया के ऊपर एक जगह एक और ऑफिस लिया हुआ है वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट करके चला रहे हैं.
4: क्योंकि आपकी सर्विसेज के लिए काफ़ी बड़ी स्पेस होनी चाहिए.
3: हाँ जी.
4: तो उससे आपको गवर्नमेंट से कुछ हेल्प नहीं मिल सकती है या काउंसिल से?
3: government says it's very hard to get space or to get wages for people. Mm-hmm. Government grants program ke direction mein wo log generally program wo jo run karne ke liye they provide a bit of funding but they don't provide funding mm-hmm. for employing people especially that has been our experience. To koshish to kar rahe hain dekhte hain abhi kuch mil jata hai
4: to Indian government
1: main puchna tha to kya آپ کبھی کیسے فنڈنگ کیسے ہوتی ہے سولہ لوگوں کو امپلائی کر کے آپ کرتے ہیں تو فنڈنگ اگر کبھی کبھی اپنی پاکٹ سے بھی دینا پڑتا ہے کیا
3: دیکھیے ایسا ہے سولہ لوگ جو ہے اس میں کافی سارے والنٹیئرس لوگ ہیں ہمارا اکراس دا بورڈ یہاں پر ڈبو دین بلیک ٹاؤن آفس اینڈ لٹل انڈیا این ایس ڈبلیو ان سب ملا کے تقریباً ہمارا 12,000 का डॉलर का पर मंथ का एक्सपेंडिचर है सो दैट्स अ फेयर बिट ऑफ मनी
4: यस
3: एंड तो हम लोग क्या करते हैं नॉट एवरीथिंग गोज थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग हम लोग गवर्नमेंट के फंडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्टेन प्रोग्राम बेस्ड काइंड ऑफ इवेंट्स हाउएवर देयर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर वी डिलीवर प्रोग्राम्स थ्रू थ्रू अदर ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू हुम वी गेट ए लिटिल बिट ऑफ मनी Like for example, ہمارا پورا ڈیجیٹل ایجوکیشن پروگرام جو ہے فار سینئرس فار ویمن وہ پروگرام جو ہے ہمارے ایک سنستھا ہے ایک آرگنائزیشن ہے کال گڈ تھنگس فاؤنڈیشن ان کے دوارا وہ ہم پروگرام چلاتے ہیں پھر سملرلی ایوری ویکینڈ ہم لوگ پبلک نوٹری سروسز چلاتے ہیں 3:30 to 5:30 ٹو آورس پبلک نوٹری دین ہم لوگ وہاں پر थोड़ा मोस्ट फेयर बिट ऑफ मनी नोटरीज को ऑब्वियसली देना पड़ता है बाकी जो है हमारे एडमिन एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा वहाँ से पैसा
1: कमाल है सुब्बाराव जी आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं 12,000 पर मंथ आपका एक्सपेंसेस हैं और इसका मतलब ये होगा 144,000 पर एनम आप इतना रेज कर लेते हैं आपका मतलब ये है कि हम तो एक्चुअली हमारे दर्पण रेडियो का जो स्पॉन्सरशिप है उसके चलाते हैं और हैंड टू माउथ ही रहते हैं लेकिन यह है कि हमें शायद थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है तो आपका डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन हम आपको साधुवाद देते हैं कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं अच्छा आपने कई संस्थाओं के नाम लिए एक बार फिर से 1, 2, 3, 4, 5 करके हमें बता दीजिए कौन कौन सी संस्थाएँ आप चला रहे हैं
3: अच्छा जो 2015 से जो हमने शुरू करी थी इंडियन सपोर्ट सेंटर इनकॉर्पोरेटेड एंड उसके वो 10 साल अभी 11वां 12वां साल चल रहा है अभी देन दूसरी संस्था जो है 2023 में हमने रीजनल डब्बों में चले गए वो इसलिए भी गए थे कि वी आर टॉकिंग टू मल्टी कल्चरल NSW वन ऑफ देयर प्रायोरिटीज इज रीजनल सेटलमेंट
1: अच्छा
3: तो वो रीजनल सेटलमेंट के चक्कर में उन लोगों ने देखा वॉज अ बिट ऑफ ए ग्रांट विच वॉज एनफ टू ट्रेन पीपल एंड मेक देम जॉब रेडी फिर उसके बाद हम उनको डब्बो भेज सकते हैं बिकॉज डब्बो इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट तो इस सिलसिले में हमने वहाँ जाके एक ऑफिस खोला हुआ है वहाँ पर एंड वो चल रहा है अभी वी गॉट अवर ओन फंडामेंटल इश्यूज ऑफ गेटिंग राइट पीपल एंड ऑल दैट दैट इज सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन अच्छा तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है कई बार क्या होता है कि व्हेन यू गॉट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस पीपल कम टू यू फॉर सपोर्ट तो इस सिलसिले में हैरिस पार्क में लिटिल इंडिया NSW करके दैट इज रन बाय द प्रेसिडेंट इज नितिन सेठिया तो वहां पर आई एम द पब्लिक ऑफिसर देयर तो उन लोगों को हेल्प करते करते अभी एन एक्सेलेंट प्रोग्राम वी स्टार्टेड कॉल्ड फ्री शटल सर्विस
4: राइट
3: एंड ए फ्री शटल सर्विस जो है with part of it is funded by the government part of it through sponsorships from businesses in Harris Park we thank all of them
4: yes
3: so hamlo that free shuttle will take people from Parramatta station into Vikram Street Marion Street and station streets of Harris Park
1: bahut badhiya
3: imagine aap shopping karne jate hain either wahan jate hain radhe jate hain ya patel bazar jate hain 5 kilo rice 5 kilo aata leke kitni dur paidal chal paoge apne gaadi tak to unke liye ye bahut hi what do you call convenience hai تو ابھی یہ شروع کر کے دو ہفتے ہوئے ہیں اینڈ این ایس ڈبلیو گورنمنٹ کو بھی ہم ہاردک سب تھینکس کہتے ہیں اور تو میرے خیال وہ پروگرام اچھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ابھی اس پورا سال ہم لوگ ایک اور میجر پروگرام تھرو سپورٹ فرام پیرامیٹا کاؤنسل نائٹ ٹائم اکانومی پروگرامس کرنے والے ہیں ایوری منتھ تین چار ریسٹورینٹس کو لے کے ان کو خوب پروموٹ کر کے تھوڑا وہاں پر بالی ووڈ سنگنگ ڈانس یہ پروگرامس کریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ابھی دیٹ از تھرڈ آئٹم دا فورتھ ون دیکھیے وین یو رن انڈین سپورٹ سینٹر perceptions sometimes can be a bit problematic.
4: Yes.
3: The general public out there tend to think ye Indian support center khas karke Indians ke liye hi hai. To usse baki log kafi log nahi aate hain and also when you approach the government they say oh Indians may not require support.
4: Yes.
3: Indians are well to do hard working intelligent people. Aap logon ko zyada government ki madad nahi chahiye. To isliye to circumvent that and try to deliver the services to wider cross section hum logon ne we now started multicultural communities.
4: Yes.
3: Multicultural community support center in Blacktown. Chahe koi bhi migrant, South America, South Africa, Middle East, South Asian countries, ASEAN countries, jahan se bhi jo bhi aaye hain, wo wahan par aake madad le sakte hain. Khaas karke us program mein hum log, we are just conceptualizing employment pathway as the major program.
4: Yes.
3: Doesn't matter whether you are from India or anywhere in the world, where there are a lot of colleges where students pass out, but they don't get jobs. So, hum log is waqt employment pathway ke roop mein unko laake train karke industry ke saath baat karke unko placement karne ka massive program we have undertaken at multicultural community support center. So these are the four institutions where my time goes.
1: Bahut badhiya sahab, bahut acha. To isi ke saath saath hum ek geet sunate hain, fir uske baad आपने इतनी अच्छी बात बताई, इतने लोगों को आप सिखाते हैं, तो कल टीचर्स डे था, उसके बारे में गीत के बाद हम वो वार्ता सुनेंगे, फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
4: शिक्षक दिवस,
1: शिक्षक दिवस।

0: भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है
1: बहन जी करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है इसमें आनियन गार्लिक जिंजर टमाटर नमक मिर्च हल्दी धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है इट्स सो इजी इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश
3: सरिता सोनी का प्यार भरा नमस्कार श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो हमारे जीवन को दिशा देता है गुरु और शिष्य का रिश्ता आप सभी ने दोहा सुना होगा संत कबीरदास जी का है गुरु गोविंद दउ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए श्रोताओं 5 सितंबर हमारे लिए बहुत खास दिन होता है क्योंकि इस दिन हम भारत के महान शिक्षक दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं उनके जन्मदिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान देना या परीक्षा पास करवाना नहीं है शिक्षा का असली उद्देश्य है एक अच्छे इंसान का निर्माण करना उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल पढ़ाता नहीं बल्कि विद्यार्थियों को जीवन की सही दिशा भी दिखाता है अगर हम भारत की बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की बहुत पुरानी और सुंदर परंपरा है आज समय बदल गया है आज गुरुकुल की जगह स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय और ऑनलाइन शिक्षा ने ले ली हमारे पास किताबों के साथ साथ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी भी है लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली है और वो है हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत जो हमेशा रहती है हम सभी को जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें बताए कि सही रास्ता क्या है हमारी गलतियों को समझाए मुश्किल समय में हमारा हौसला भी बढ़ाए और हमें खुद का बेहतर रूप बनने के लिए प्रेरित करे और अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो हमारे

0: पहले गुरु हमारे माता पिता और हमारा परिवार होता है। हमारे माता पिता हमें केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने व्यवहार से सिखाते हैं। इसलिए मैं मानती हूँ कि माता पिता हमारे लाइफ लॉन्ग टीचर्स होते हैं। एक शिक्षक हमें विषय का ज्ञान दे सकता है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक हमें जीवन को समझना भी सिखाता है। और यही भावना ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलती है। यहाँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स डे 3 सितंबर को मनाया जाता है, जिसके माध्यम से सभी एजुकेटर्स को सम्मान दिया जाता है, जो छोटे बच्चों की लर्निंग, डेवलपमेंट और वेलबींग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक एजुकेटर बच्चे को केवल लेटर्स या एक्टिविटीज नहीं सिखाता, वह बच्चे में कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, काइंडनेस और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने में भी मदद करता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, हम सभी किसी ना किसी के शिष्य हैं और शायद हम सभी किसी ना किसी के गुरु भी हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सत सत नमन और सभी शिक्षकों एवं एजुकेटर्स को मेरा दिल से धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे और हैप्पी एजुकेटर्स डे। और इन शब्दों के साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, आप सभी का दिन शुभ हो। सुनते रहिए रेडियो दर्पण। धन्यवाद श्रोताओं।
1: सरिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर वार्ता प्रस्तुत की है।
2: बहुत अच्छी बात है और हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है। तो आशिमा जी, आप कुछ पूछना वाली थी।
3: हाँ शुभा जी, आप बताते शटल सर्विसेज के बारे में, पैरामीटर टू हैरिस पार्क, तो उसमें कैसे कैसे मतलब टाइमिंग्स बताइए, जैसे सब श्रोताओं को मालूम पड़े और आपकी शटल सर्विसेज यूज़ कर पाए।
4: अच्छा जी, सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि हैरिस पार्क का मेन प्रॉब्लम है पार्किंग। मान लो आप इवनिंग जाना चाहते हैं फैमिली के साथ फाइन डाइनिंग के लिए कहीं कोई भी रेस्टोरेंट में, वहाँ पर पार्किंग नहीं मिलता है। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं चलो घर जाते हैं वापस या कहीं और जाते हैं। तो इसलिए पीक टाइम जो है अब वीक का थर्सडे टू संडे होता है। तो हम लोगों ने बजट्स को ध्यान में रखते हुए थर्सडे टू संडे 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये शटल सर्विस जो है पैरामीटर स्टेशन से टू वेरियस स्ट्रीट्स जो है हैरिस पार्क के, वो शटल सर्विस चलता रहता है। तो ये हमने शुरू करी थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रफली तकरीबन 25 मिनट से 30 मिनट्स का सर्विस टाइम है जहाँ भी आप लेते हैं ना बस को, तो 30 मिनट्स के बाद वहाँ पर वापस आ जाएगा।
1: तो इसका मतलब कि हर 25 से 30 मिनट में आपको गाड़ी मिलेगी वहाँ से।
4: हाँ, इस वक्त।
1: और दिन में नहीं मिलेगी 6 बजे से पहले?
4: दिन में हम लोगों ने अभी बजट के वजह से हमने डे टाइम हमने शुरू नहीं करी। वी आर फाइंडिंग थोड़ा सा बजट अगर मिल जाए तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। बट इस वक्त इट्स अ रिस्ट्रिक्शन टू रन ओनली फॉर थर्सडे टू संडे।
2: अच्छा, हो सके तो स्टॉप्स के बारे में बता दीजिए कहाँ पर है।
4: जी, इट्स पहले तो शुरू तो 10 वैलेंटाइन स्ट्रीट स्टेशन के बिल्कुल बगल में है, वहाँ पर पिकअप करेंगे। वहाँ पर पिकअप करके पार्क स्ट्रीट से लेके हैसल स्ट्रीट पे एक कार पार्क है, उसका नाम है इंटर पार्क कार पार्क। वहाँ पर भी लोग पार्क करते हैं वीकेंड्स में, तो सिर्फ आई थिंक दे चार्ज ओनली $4। तो वहाँ पर कार पार्क करने के बाद फिर वहाँ से लोगों को हम पिकअप करके विक्रम स्ट्रीट जहाँ मलबार गोल्ड डायमंड शॉप है वहाँ पर एक स्टॉप है। फिर सीधा विक्रम स्ट्रीट पे जाते समवेयर नियर 88 आई थिंक विक्रम स्ट्रीट, वहाँ पर एक स्टॉप होगा। फिर उसके बाद मेरियन स्ट्रीट है, वहाँ पर लेफ्ट लेके हम लोग जो पटेल ब्रदर्स है वहाँ पर डेफिनेटली एक स्टॉप है। एंड फिर वहाँ घूम के वापस मेरियन स्ट्रीट से जाके हम लोग राधे पे जाके वहाँ पर एक और स्टॉप है, वहाँ पर रोकते हैं।
2: बहुत बढ़िया।
4: हाँ, वहाँ रोक के फिर बाद में सीधा वहाँ से जाके पार्क स्ट्रीट फिर बैक टू द रेलवे स्टेशन।
2: अच्छा, तो ये एक पहले तो ये बताइए कि $4 वाला जो पार्किंग है वो कहाँ पर है?
4: वो तो हैसल स्ट्रीट और विक्रम स्ट्रीट का क्रॉसिंग है।
2: अच्छा,
4: जंक्शन छोटा सा राउंड अबाउट है।
2: अच्छा,
4: बिल्कुल वहीं पर।
2: अच्छा,
4: इट्स बिगिनिंग ऑफ हैरिस, बिगिनिंग ऑफ विक्रम स्ट्रीट।
2: अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा,
4: वो हैसल स्ट्रीट के बिल्कुल इंटरसेक्शन पे।
2: अच्छा,
1: दिस इज द फ्री सर्विस
4: बाय नेम इटसेल्फ we are saying it's a free shuttle. Nobody has to pay anything. And Anji.
2: So is a search karne ke liye kya kar rahe hain internet par?
4: हाँ आप लिटिल इंडिया NSW फ्री शटल करके देख लीजिए अगर आता है तो हम लोग वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्रमोशन इन फेसबुक बट फ्री शटल हैरिस पार्क डालने से आपको काफ़ी जानकारी मिलना चाहिए
2: बहुत बढ़िया साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप इतना कर रहे हैं मतलब गजब की बात है आप कमाल है
4: थैंक यू
1: लिटिल इंडिया में और आपके क्या प्लान्स हैं उसको डेवलप करने के लिए
4: देखिए काउंसिल के साथ काफ़ी बातें होती रहती हैं उनसे बात कर रहे हैं और डॉक्टर एंड्रू चार्ल्टन जी जो है फेडरल एमपी उनसे भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि एंड ऑल्सो वहाँ का लोकल एमपी जो है डोना डेविस जी तो वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करती हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो काउंसिल विद फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट वो लोग उनके प्लान में है काफ़ी करने का लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं स्ट्रीट लेवल एक्टिविटीज हम कर सकते हैं अभी पूरा साल हम लोग एवरी मेरे ख्याल 6 to 8 weeks हम लोग एक नाइट इकोनॉमी प्रोग्राम कर रहे हैं
1: अच्छा
4: काउंसिल इज सपोर्टिंग अस इन दैट नाइट इकोनॉमी में ये होगा कि विल पिक अप दिस मंथ 4-5 रेस्टोरेंट्स को लेके उनको खूब प्रमोट करके एक बॉलीवुड एंड डांस ग्रुप एंड सिंगर वो रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट उनको ले जाके एंड वी वांट टू अट्रैक्ट लॉट मोर विजिटर्स टू हैरिस पार्क एट द एंड ऑफ द डे वी वांट मोर फुटफॉल इन टू हैरिस पार्क ये पूरा साल ये चलेगा फिर उसके बाद जो है एक एक और विथ मल्टीकल्चरल NSW से छोटा सा स्ट्रीट फेस्टिवल का भी कुछ प्रोग्राम होगा इसके अलावा भी देर आर अदर थिंग्स लाइक वी हैव जस्ट विद अ स्मॉल ग्रांट वी आर डूइंग डिजिटल एजुकेशन फॉर सीनियर्स तो काफ़ी सारे इंडियंस जो है सीनियर्स वहाँ पर आते रहते हैं स्पेशली आप वीकेंड जाओ तो आगे जाके एक पार्क भी है वहाँ पर भी वहाँ पर तो हनुमान चालीस सुंदरकांड वगैरह बहुत होता रहता है वहाँ पर तो उन सबको बुला के थोड़ा कंप्यूटर्स का सिखा के स्कैम्स के बारे में बता के थोड़ा AI फॉर डे टू डे लाइफ वो थोड़ा बता के ये सारे चीज़ों में हम उनको जानकारी देने का प्लान है और इसके लिए थोड़ा छोटा ग्रांट भी अप्रूव हो चुका है वो हम करने वाले हैं दिस प्रॉबेबली हम लोग वहाँ पर हैरिस पार्क कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर है उनसे बात करके वहाँ करने जा रहे हैं
2: अच्छा आपने AI का नाम लिया तो मेरे जहन में एक सवाल आया
4: जी जी
2: कि आप की AI कंपनी है
4: IT
2: कंपनी
4: जी जी जी
2: IT कंपनी पर AI का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी कंपनी पर
4: देखिए हमारे लिए तो मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो काम मैं पहले 5 घंटे 6-6 घंटे में लेता था करने के लिए अभी 15 मिनट आधा घंटे मेरा काम हो जाता है पहले आई नीड टू डिपेंड ऑन सम अदर पर्सन वो कब आएगा क्या करेगा उस पर डिपेंड करता था अभी मैं सीधा आई यूज़ ओपन चैट GPT इंस्टेड दैट यू कैन यूज़ एनी AI टूल वो यूज़ करके मैं सीधा सीधा जो मैं करना चाहता हूँ कोई टेंडर सबमिशन हो किसी को चिट्ठी लिखना हो पूरा ड्राफ्ट भी पूरा बुलेट पॉइंट्स 4-5 बुलेट पॉइंट डाल देता हूँ इतना अच्छी तरह से मेरे को वहाँ ड्राफ्ट मिल जाता है फिर उसको मैं मॉडिफाई करके आगे ले जाता हूँ
2: अच्छा ये बताइए कि आपके इसके पहले 3-4 साल पहले कितने एम्प्लॉय थे और अब कितने हो गए आपने कुछ को निकाला क्या
4: इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन देखिए देयर आर टू थिंग्स एम्प्लॉयज को रखना एक तो यह है कि बिजनेस अच्छा काफ़ी जाना चाहिए आगे तो फिर एम्प्लॉयज को भी रख सकते हो लेकिन इट्स वेरी इजी टू से 1 in 3 or 1 in 4 रिडक्शन जरूर होगा जरूर हो जाएगा हो गया होगा ऑलरेडी तो इसलिए मैं समझता हूँ पीपल हैव टू रीट्रेन देमसेल्व्स इन AI इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ AI एंड अनलेस यू डू दैट आई एम फीलिंग क्वाइट ए नंबर ऑफ पीपल विल बी आउट ऑफ देयर मेन जॉब्स
2: ऑलरेडी काफी निकल
4: रहे चल रहा है अभी आप इंटरनेट में जाके देखिए यस लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हैपनिंग एंड अभी एक और अभी मान लीजिए क्लाउड को देखिए क्लाउड AI सॉफ्टवेयर तो सीधा सीधा कोड जो है आप और हम भी बैठ के थोड़ा जानकारी हो आप और हम भी बैठ के कोड लिख सकते हैं
2: बिल्कुल
4: तो इतना आसान हो गया उससे लेकिन एट एंड ऑफ द डे जो भी AI आपको बना के देगा अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन हैज टू वेट इट human brain has to wet it and then you can take